0: This is your host, Manisha and Arun, bringing you the show today.
1: Good morning, listeners. Aapki khidmat mein pesh hai Geet Mala, kuch gine chune geet. On this third Saturday of May 2026, it's a beautiful day outside, bright, sunny, aur temperature bahut hi comfortable aur convenient hai.
0: हाँ, आज तो सनी है, बट लास्ट वीक एज आई वॉज गोइंग टू वर्क और ऑल डे लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इट वॉज रियली वेरी क्लाउडी.
1: सो व्हेन यू ड्राइव यू लुक आउट ऑफ द विंडो, हाउ डू यू ड्राइव देन? आई शुड नॉट स्टे ऑन दैट रोड.
0: सिटिंग इन द ऑफिस आई लुक आउट एंड इट्स सो क्लाउडी, सो दैट मेड मी थिंक वी हैव अगेन अ होल स्लू ऑफ सॉन्ग्स विद द वर्ड बादल इन इट.
1: Oh, I got it.
0: So, badal, which is clouds. Clouds are badal in Hindi. So, today I have a nice playlist of some songs describing badal in from the Hindi filmy songs. And of course, I also have a few Mother's Day dedication, which were pending from last week as we had a full show from Mother's Day weekend. So I have a song for that too. So stay tuned. I'm going to start off with a really old song, Arun.
1: Oh, okay. Old
0: from our Sunere Gaane, or what do we call it? Not Bhule Bisre, but Sada Bahar Gaano se pesh kar rahi hoon. Ek 1943 ka gaana. एक्चुअली 1940 फिल्म है किस्मत, और मैंने ये गाना सुना हुआ है और ग्रोइंग अप आई सॉ द मूवी ऑन टीवी व्हेन दे स्टार्टेड दूरदर्शन इन इंडिया इन द 70s. वी गॉट टू सी ऑल द ओल्ड ब्लैक एंड वाइट मूवीज एंड आई थिंक दिस मूवी इज अ वेरी well-known old movie. Let's play the song, and I want our listeners to guess who are the singers in this song.
1: Okay, I won't try it.

0: हाँ, ये जो गीत लिखा गया उसमें बोला है, बादल तू मेरी अटरिया, मेरी अटरिया मीन्स आई थिंक रूफ टॉप, पे शोर मत मचा, जरा दूर चले जा। और ये बोल थे राजेंद्र किशन के, गाया था लता मंगेशकर ने, और संगीत था चित्रगुप्त का। वी हैव सम, यू नो, यू चोज सॉन्ग्स फ्रॉम सम वेरी अनकॉमन म्यूजिक कंपोजर्स।
1: But they are such beautiful and melodious songs, don't you agree?
0: I agree.
1: Chalo, agla gana ye gana tha, Kare Kare Badra Tu Ja, par agle gaane mein hai ki badal nahi jaye, ruke rahe.
0: Especially jab dhoop jyada ho na, uske baad badal aate, se India mein hota tha. Kadi dhoop ke baad jab July August mein badal aate to bada acha lagta tha.
1: To ye fir se Lata ji ka gana hai, movie hai Shikast, जिसमें थे दिलीप कुमार और नलिनी जयवंत। आई थिंक इट वॉज अगेन लाइक अ ड्रामेटिक मूवी। और इसमें लिख रहा है कारे बादरा तू ना जा, एंड दे आर काइंड ऑफ अ मैसेंजर फॉर पिया को संदेशा लेके जा। आई थिंक दिस इज दैट सॉन्ग, बट देर आर अ फ्यू अदर सॉन्ग्स विथ सिमिलर सेंटिमेंट्स। सो फर्स्ट लेट्स हियर दिस होल सॉन्ग, sung again beautifully by none other than the nightingale of Indian movies, Lata Mangeshkar.

0: All right, listeners, there was a little error on my part to give you the right name. So this song, Rim Jim Jim Badarwa Barse, is sung by Lata Mangeshkar, and the movie is Tange Wali. I believe, again, 1960s or early 1950s movie.
1: Right, right. It was, Gana likha tha Salil Chaudhary ne, or... Music by Salil Chaudhary and lyrics by Bharat Vyas and Prem Dhawan.
0: और
1: टांगे वाली नाम पे आया. कभी तुमने टांगे पे सफर किया है?
0: Yes, किया है, बहुत बहुत पहले.
1: कितना? मैंने जब दिल्ली में रहता था तो मेरी मदर मेरे को करोल बाग से उधर लेके जाती थी, बड़ा बड़ा लंबा काम. अपनी मासी के घर जाती तो हम टांगे में बैठ के जाते थे. जब आप टांगे पे चढ़ते हो, पीछे बैठो या आगे बैठो होता था, वो बैलेंस करता था ताकि आगे और पीछे बराबर लोग बैठे हों. और फिर टांगे को खींचता था रेन और टांगा चलता था. ठुक ठुक ठुक ठुक. वेरी नाइस नेम, टांगे वाली.
0: या देयर इज आल्सो दैट हेमा मालिनी टांगे वाली इन शोले.
1: शोले, वेरी फेमस.
0: दैट्स व्हाट वी रिमेंबर अबाउट टांगे वाली इन मूवीज. एनीवे लिसनर्स, कॉल अस इफ यू हैव एनी सजेशंस. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस शो. तो बात कर रहे हैं बादलों की. बदरा सिनोनिम है या घटा या फिर मेघ, ये सब नाम है बादल के. और अगला गाना है फिल्म छू मंतर का, और ये है लाइवली सॉन्ग थोड़ा, गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले. तो पेश करते हैं

0: So that was like a happy song on Badal. Usually when it's cloudy and it's dull, we feel like our mood is sad. We don't like it. But this song says, Badal lehrate hain to jiya jhoom jhoom ke lehrata hai.
1: Bilkul, man bhi khush ho jata hai. Jab, especially jab garmi ke dino ke baad, agar aapko thandi hawa aur thandi you know, clouds देखने को मिलते हैं, rain देखने को मिलते हैं,
0: और तो थोड़ी शीतलता आ जाती है, थोड़ी हवाएं चलती हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। और इस movie के lead actor थे जॉनी वॉकर। That's very, and you know, I think he came as a lead in some movies, but this was one of those movies.
0: और listeners, ये खाली गीता दत्त ने गाया था गाना। It was a solo गीता दत्त song। और मूवी भी थी, मजेदार नाम था छू मंतर।
1: छू मंतर का क्या मतलब होता है?
0: इट्स लाइक अ मैजिक, लाइक गायब कर दो किसी को।
1: राइट, इट्स अ वर्ड यूज्ड बाय इंडिया में, जैसे होता है मैजिशियन, छू मंतर करके किसी को डिसअपीयर कर देना, गायब कर देना। और उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट होता है होकस पोकस या एब्रा कैडाब्रा। So, छू मंतर, बूम, लेट्स गो। एंड यू नो इट्स आयरोनिक दैट आज बाहर धूप है और गाने आप बादल के बजा रहे हो, कैसे?
0: मेरे को लगा कल रात को भी बादल होने हैं, बरसात होने हैं, तो मैंने सोचा चलो बादल के गाने अच्छे रहेंगे। कोई बात नहीं, बादलों के बाद, जैसे कमलेश भाई ने मुझे मैसेज भेजा है कि बादल के बाद सनशाइन आती है, तो पहले बादल होते हैं फिर सनशाइन आती है, बरसात होती है,
1: तो राइट राइट। स्पेशली बादल और बरसात के बाद अगर सनशाइन हो, सूरज निकलता है, तो क्या देखने को मिलता है? रेनबो। सो दैट्स द बेस्ट टाइम टू कैच ए रेनबो। एनी हाउ, नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा है?
0: थोड़ा डिविएट करते हैं टॉपिक से। मुझे ये गाना मदर्स डे पे बजाना था, पर किसी कारण बजा ना सकी। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट बाय भारती देसाई जी, डॉक्टर भारती देसाई। दिस इज इन ऑनर ऑफ हर मदर। इट्स अ मराठी non-filmy song sung very well by Lata Mangeshkar. So I hope Bharti ji, you're tuned in, and let's enjoy this beautiful poem which you send, which you dedicated to your mother.

0: All right, listeners, it was a little soft playing because much, much older song, but I hope you guys enjoyed it, and I hope Ashok Bhai has been tuned in while planting flowers and enjoyed his selection.
1: ये गाना जो था 1941 मूवी का था, मूवी का नाम था डॉक्टर, और उसमें पंकज मलिक ने गाया और उन्होंने कुछ गाने लिखे भी थे इस पिक्चर के. और इट वाज अबाउट ए लिबरल माइंडेड डॉक्टर हु वर्क्ड इन ए यू नो पुअर नेबरहुड.
0: ओह वाओ,
1: या इट्स ए
0: प्रोग्रेसिव
1: 1941
0: मूवी. ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट फूल एंड बादल, लेट्स एंजॉय अ लिटिल 1960s now song. This is from movie Prem Pujari, और इसको गाया है किशोर कुमार ने. ये भी बड़ा ही सुरीला गाना है, देवानंद की मूवी है, देवानंद पे फिल्माया गया है. तो इसमें फूल और बादल काफी कुछ आते हैं, तो सुनने वाले एंजॉय कीजिए फूलों के रंग से.

0: जी हाँ, ये मूवी लव डिवोटी, लव डिवोटी मतलब कि
1: प्रेम पुजारी,
0: प्रेम पुजारी का गाना था। इस मूवी तो कहते हैं ज्यादा हिट नहीं हुई थी, लेकिन इसके गाने बड़े पॉपुलर और एवरग्रीन है और वेरी नाइस।
1: पर मुझे समझ नहीं आता इस गाने के में बोलते हैं बादल बिजली चंदन पानी जैसा तेरा प्यार। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द सिमिलैरिटी बिटवीन बादल, बादल और बिजली तो मैं समझ सकती हूँ, चंदन और पानी, पानी बादलों से गिरता है पर चंदन कहाँ से आता
0: चंदन
1: है?
0: चंदन में जो खुशबू होती है, जो मतलब खुशबू की एक्सप्रेस कर रहा है कि जो प्यार में खुशबू मिलती है, या
1: anyway,
0: कई बार प्यार में एक दूसरे पे लोग कई बार बादल की तरह
1: गरजते
0: भी हैं, तो आई थिंक इट रिफ्लेक्स दैट।
1: एनीवे
0: नीरज के लिखे हुए गाने को बड़े अच्छे गहरे मीनिंग है आई थिंक।
1: या आई एम अ मियर mortal, how do I understand that much deep poetry, but it was I like the song, it has such beautiful sur and the flow and Kishore Kumar has sung it so well.
0: Agar tumne hindi ke gaane ka program karte rehna hai to you have to go a little deeper into their, you know, deep meanings or take some lessons.
1: Anyway jokes apart, let's go back a little bit to Badal. अगला गाना है आई थिंक वन ऑफ पॉपुलर 50s या 60s की मूवी चित्रलेखा, इसे खूबसूरती से गाया है आशा भोसले ने, और अगेन छा गए बादल नील गगन पर।

0: बोलो।
1: जी हाँ, छा गए बादल नील गगन पर। तो गगन तो नीला होता है, जब बादल आ जाते हैं तो बदल जाता है, राइट? कभी ग्रे कभी ब्लैक। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी अभी सीखी है, तुमने शायद कभी सुना है कि जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट, आई होप आई एम स्पीकिंग इट करेक्टली,
2: वेदरमैन
1: इजियर वे टू से इट, कितने टाइप के बादल डिस्क्राइब किए गए? अगर तुम होती, तुमने मीटियोरोलॉजी ली होती कॉलेज में, तो कितने टाइप के बादल सिखाए जाते तुम्हें?
2: आई नो 4 या 5 किस्म के बादल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ। आई डिडंट लर्न इट इन स्कूल, बट आई लर्न दिस व्हेन माय डॉटर वाज इन स्कूल एंड शी वाज इन साइंस और शी वाज लर्निंग अबाउट क्लाउड्स। आई थिंक दिस वाज द 3rd grade or 4th grade।
1: Without the help of AI, Google says there are 10 types of clouds.
2: Oh, wow.
1: Yeah, so it's if anyone is interested, you know, curiosity is a good thing to have. So learn more about badals.
2: Yes.
1: And
2: thank you, listeners, for your appreciation. Thank you, Ashok Shah. Yes, that song also had badal in it, as you said. So that was cool. And thank you, Malini ji, for calling and giving us encouragement and appreciating the effort we put in to create this show, to curate this playlist. So you are really welcome. We enjoy making this list and bringing it to listeners. So it's all good. And it's 12 o'clock. We've almost done an hour of Geetmala, another hour to go. And if you're just tuning in, this is Geetmala coming to you from WVKR, independent radio station from Vassar College, Poughkeepsie, New York. WVKR.org on the web or 91.3 FM if you're local on the FM radio. Call in at 845-437-7178.
1: आप दुनिया के किसी भी कोने में ये प्रोग्राम सुन सकते हैं, क्योंकि शुरू में मतलब अभी थोड़ा टाइम हो गया, वी यूज टू शेयर दिस प्रोग्राम इन्फो अबाउट दिस रेडियो शो विद सम फ्रेंड्स इन इंडिया टू, एंड दे यूज टू लिसन, बिकॉज इंडिया में भी क्या टाइम होगा, 12, 9.5 hours डिफरेंस है 9:30, सो पीपल इन इंडिया यू नो यूजली टिपिकली दे स्लीप लेट 11, 11:30. So, but we haven't done it in a long time. Maybe we need to restart sharing with your medical school friends.
2: Sure. So, बादलों की बात कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के बादल हैं, काले बादल हैं, पर poetic language में बादल हमने कहा था कैसे किस्म के बादल हैं जो पहले गाने थे,
1: धीरे धीरे
2: आना बादलों को,
1: कभी हम बुलाते हैं कभी बोलते हैं चले जाओ,
2: पर अभी अगला गाना बोलते हैं दीवाना हुआ बादल, तो बादल भी दीवाने हो सकते हैं। ये गाना है कश्मीर की कली और इसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

0: अच्छा बोलो
1: जी। हाँ, बड़ा ही एवरग्रीन म्यूजिक है कश्मीर की कली पिक्चर का। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं मनीषा कि सिर्फ एक ही मूवी के गाने बजाएं सब? व्हाट डू यू थिंक?
0: या देर आर डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वी कैन डू, सो वी हैव अ लॉट ऑफ रूम, वी हैव लॉट ऑफ शोज टू डू।
1: Right,
0: so don't
1: I know.
0: Worry, we'll do everything.
1: We'll get to it, okay.
0: So, yeah, thank you listeners for liking, enjoying the show with the theme Badal. Yeah, there was a little glitch, so I apologize.
1: Yeah, wo dusra gana dhoondne shuru karo na beech mein. To jara sa kahin mein wo jo mouse hai na, bahut hi shararti hai. Kahin dusra jara touch bhi kar jaye to chun chun chun kar deti hai aur badal jata hai track.
0: Yeah, I'm just trying to find the songs which you guys have requested, so... that's why this song was interrupted. Anyway, in the meantime, एक और मेरी playlist का गाना सुनते हैं, और ये भी लता जी की आवाज में है। फिल्म है पति पत्नी, और ये भी पुरानी पिक्चर है। और अगेन बादल, क्योंकि काले होते हैं हिंदी फिल्म में, बड़े कंपेयर किया हुआ है कजरे, कजरा मतलब काजल,
1: right.
0: और बादल, तो ये गाना है कजरे बदरवारे।
1: अच्छा, मैं एक और देख रहा था, मतलब बादल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची यानी कि
0: synonyms.
1: Wow, you are very smart. How did you guessed it? Because you know me so well. I think बादल के पर्यायवाची शब्द मिले जो बहुत ही हैं। सुनिए, थोड़े से बताऊंगा, सब बताऊंगा तो पूरा प्रोग्राम उसमें लग जाएगा और कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। मेघ, जलद, प्रंजय, मेघमाला, मेघवाली, घन वाला, वारिद।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अगली इस गाने के बाद दूसरे बता।
1: नहीं नहीं, बस दिस इज एनफ फॉर दिस शो आई थिंक।
0: चलिए ये अगला गाना एंजॉय करते हैं।

0: तो वो गाना था, फिल्म थी पति पत्नी और गाया था लता जी ने। तो लिसनर्स, आपके रिक्वेस्ट मिले हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की। इन द मीन टाइम मेरा एक गाना और सुन लीजिए, ये है धरती कहे पुकार की। तो इसमें अगेन बादल को जाने को कह रहे हैं, बलम के द्वार जा बादल।
1: तो बादल बलम के द्वार जाएगा तो कोई मैसेज लेके जाएगा, या बलम ने काफी दिन से नहाया नहीं है, उसको थोड़ा पानी चाहिए या कुछ?
0: हाँ तो नहीं, आई थिंक बादल मैसेंजर का काम करेंगे। तो ये भी गाया हुआ है फिर से हमारी क्वीन ऑफ हिंदी म्यूजिक नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी ने।

0: जी हाँ, ये 1969 की मूवी थी धरती कहे पुकार के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन को जो पिक्चराइज किया गया था नंदा पे, और इस जो स्टोरी प्लॉट पे जो गीत लिखा था वो था मजरू सुल्तानपुरी का। और कभी कभी जो सैया जो है आपका जो समझ नहीं रहा था बात, तो बादल को बोल रही थी जाके समझा मेरे
1: बुद्धू
0: बुद्धू सैया को, और वो बुद्धू सैया को बुद्धि दे। और उस बुद्धू सैया का इस एक्टर कौन था इस मूवी में?
1: आई थिंक शशि कपूर की।
0: जितेंद्र, जीतू भाई, जितेंद्र कपूर।
1: अच्छा, जितेंद्र,
0: जीतू भाई। एनी हाउ,
1: जीतू भाई तो नहीं बुलाते थे उसको, जीतू बुलाते
0: नहीं
1: थे,
0: पर बोलते हैं। अच्छा। अभी वो आए थे, क्या नाम है, जो अनंत जी भाई आए थे।
1: अच्छा।
0: वो बोल रहे थे जीतू, और हम एक ही गली में रहते थे बचपन में।
1: सो दैट वॉज नाइस, आई मीन प्लेफुल सॉन्ग ऑन बादल, एंड यू कैन इमेजिन जस्ट सी द रेंज ऑफ लता मंगेशकर सिंगिंग पावर्स फ्रॉम the older songs right in this show itself, the different genres which she has sung, and this song shows like this is like a young adolescent girl just singing in the rain.
0: Right, right.
1: To chaliye agla gana ek farmaish aayi hai Meena ji ke liye, Meena ji se, from Meena Saraf, aur ye hai Asha Bhosle aur Usha Mangeshkar ka gaya hua gana जो आई थिंक आई डिडंट रिलीज द माई थीम टूडे बिफोर हैंड, बट नाउ पीपल हैव कॉट अप एंड सो दे आर ऑल्सो दे वॉन्ट टू फाइंड देयर ओन बादल सॉन्ग, सो दैट्स रियली नाइस। सो थैंक यू मीना जी, दिस इज देखो बिजली डोले बिन बादल के।
0: आई थिंक हर एक कोई ना व्हाट्सएप ग्रुप में इतना इन्वॉल्व होता है, कई बार कई वाला व्हाट्सएप ग्रुप में देखते ही नहीं है, देन सडनली देख रही होंगी मीना जी, अच्छा ओ ये तो देखा ही नहीं, अच्छा मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ।
1: चलिए ये गाना सुनते हैं, ये भी बहुत ही नटखट वाला और सुरीला गाना है, दो बहनों ने गाया हुआ है, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, दोनों बहनें थी और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर थी, तो सुनिए।

0: जी हाँ, कई बार जो होता है ना, बादल होते हैं और बिजली भी आती है। कई बार ऐसा आप देखो, आप जैसे कहीं हो सड़क पे ड्राइव कर रहे हो, बहुत दूर से बिजली चमकती हुई दिखती है लेकिन बादल नहीं होते, तो आपको लगता है शायद अभी बादलों का रुख बदलेगा, जिस तरफ आप जा रहे हो तो वहां भी शायद बादल और बिजली आ जाएंगे।
1: हाँ,
0: बट इट्स वेरी यू नो इट्स इट डज हैपन।
1: बिजली बिजली पहले शुरू होती है,
0: बिजली कई बार दूर से दिख जाती है, बादल बाद में आते हैं, और कई बार बादल पहले आते हैं और फिर बिजली आती है, बिजली यू नो जोर से कड़क के आवाज से आती है।
1: और अगला गाना मैंने चुना है अरुण जी, एक आपकी फेवरेट फिल्म से आपको सरप्राइज देने के लिए। ये फिल्म ये है, अभी ये गाना है कहां से आए बदरा।
0: ओ, तो ये जी को, जी कौन है,
1: कहां से आए? अरुण जी आप हैं?
0: अच्छा, मैं हूँ, मैंने किसी और से बात कर रही हो, हेलुसिनेशन हो रहे हैं आपको शायद।
1: तो ये दिस इज अ रिलेटिवली न्यूअर सॉन्ग लिसनर्स, फॉर कंपेयर्ड टू द रियली रियली ओल्ड वंस व्हिच आई हैव बीन प्लेइंग। ये मूवी है चश्मे बद्दूर, और ये गाया है गाना के जी यशुदास ने, और बहुत ही सुरीला गाना है। आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन क्लासिकल रागाज, कहाँ से आए बदरा, एंड आई होप लिसनर्स रियली एंजॉय इट।

0: जी हाँ, ये गाना था मूवी चश्मे बदूर का, 1981 की रिलीज थी. आई थिंक आई प्रॉबली सॉ इट. इसमें एक्टर थे फारूक शेख और दीप्ति नवल. दीप्ति नवल इज यू नो अमृतसर बॉर्न, स्टडीड इन आई थिंक NYU, ग्रू अप इन क्वींस एंड वेंट बैक टू इंडिया टू एक्ट. एंड फारूक शेख वॉज अ वेरी ग्रेट एक्टर, यू नो केम इन आर्टसी मूवीज एंड सो.
1: Yeah, that was a beautiful song. It was a little long and we were trying to search the requests which listeners have sent. So bear with us. In the meantime, there's another song with Badra and this is from the movie Mera Saya. And it's Naino Mein Badra Chaye.
0: Oh, before you go on that, Naino Mein Badra Chaye. How do clouds form? Wo pooch raha tha na, kaise bante hain? तो क्लाउड फॉर्मेशन की चार स्टेजेस होती हैं, वेपोरेशन ऑफ वाटर, एक्सपेंशन एंड कूलिंग, कंडेंसेशन एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई. एनी हाउ, सो सॉन्ग क्या है?
1: सॉन्ग तो है ये नैनो में बदरा छाए, मीनिंग व्हेन देयर इज क्लाउडीनेस इन योर आईज.
0: ओके, ब्रिंग इट ऑन, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग.

0: All right, next song I think is going to be our last song, listeners. Trying to find the song from Chupke Chupke, request by Aruna Jindal. Chupke Chupke Saavan Mein. So give me a minute to open up your song, Aruna Ji, and let's enjoy this song with all our listeners. Thank you for your request.
1: ये जो पिक्चर थी ना चलते चल क्या नाम था चुपके चुपके बड़ी लाइट हार्टेड मूवी है आई थिंक आई हैव सीन इट कपल ऑफ टाइम्स वेरी एंजॉयबल फैमिली ओरिएंटेड मूवी
0: सो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग रिक्वेस्टेड बाय अरुणा जी